की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म समृद्ध स्वामी श्री माधवानंद जी भगवान की जय।

जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धर्म सम्राट स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्याला

0: साथी में आड़ू मानलिक ओ नाभि में रुद्रा से साथी में अरमा न लिख दो नाभि में रुद्रा लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा गोड़ों पे कन्हैया लिख ओ पैरों पे बल दे वे पे कन्हैया लिख दो पैरों पे बल लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा बोलो सतगुरु देव की जय। अच्छा बोलिया बढ़िया और बोलो
1: और एक और तीन
0: तीन तीन तीन हाँ आना गरुसा

0: गरुसा मेरे याना आप याना गरुसा मेरी संगतों में आ जाना हरिओम
1: हरिओम
0: वाह वाह गाना

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

अलकपुरी जी महादेव की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की। सत्य सनातन धर्म की जय। Blessing of all dear sisters and brothers.

श्री प्राण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति। हरिओम।

हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है, निर्गुण से सगुण बन आए, भक्तन के हितकारी है।

0: नंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě, jestli budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

0: तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय दक्षा धरनाशकाय, कंठ में भी कर दो गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य, सूर्याय मेष धरनाशकाय, हरिः ओम पिनाकहस्ताय, सूर्याय श्रीनीलकंठाय, वृषध्वजाय, ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय, पिनाकहस्ताय, सनातनाय, ओम दिवाय देवाय दिगंबराय, तस्मै हकराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम। अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, यस्मृत पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ज्यादा हो गए Put some more, yeah, this. That's all right.
1: Huh.
0: What's up?
1: Take knife away. After prayer, let's go. Hey boy, come here.
0: तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। गुड गुड। पिनाकहस्ताय जटाधराय, गुड। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय, ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जल स्नानम करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्री नारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि, इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम

नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम इति पञ्चामृतमयानितं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पावनयज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम सदाशिवाय नमः साम सदाशिवाय नमः एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग हरिम सदाशिवाय नमो नमः साम सदाशिवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम तरुपुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां इदं मधुस्नानं करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः हरिः ओम ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्लशशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओदो सदाशिवाय नमः ओम सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः हरि ओम पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां हरिः ओम पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम हर हर महादेव नाउ वाटर ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु ओम श्रीनारायण नमः श्री पशुपते नमः श्री गंगाधराय नमः जटाधराय नमः ओम अष्टांगलिंगाय नमः ओम सदाशिवाय नमो नमः ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती पानी और ओके अब तिलक तिलक करना है भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम चंदनंतु महत्पुण्यम पवित्रम भावनासनम आपदम हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा ओम सदाशिवाय नमः साम

0: पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: चावल और चावल भी लगाइए सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी थलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादि संयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। कॉइन्स। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्यमे दक्षिणां समर्पयामि साम मसला शिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लक्ष्ये वस्त्रं समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब दत्तु।

धतूर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतूर को स्मरण करके। हरि ओम धतूर सहित पुष्पादि समर्पयामि। कान्नाथ कान्नाथ प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन जय दुर्वाम समर्पयामि। बस त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम। ग्यारह टाइम चढ़ाइए। त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी। हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पता है। कैन यू पास दैट थाली टू स्वामी जी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंगजम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गमगणाधिपतये नमः। श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्री गमगणाधिपतये नमो नमः। सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा खुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देवतुभ्यं वासति प्रतिगृहताम। थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंदु लगे थी बहुत। हरियम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनंतु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरियम श्री सांब सदा शिवाय नमः। समन कैन प्ले द बेल। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ना अगरबत्ती

0: कृष्ण
1: शंकर भगवान
0: की जय। अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर। हरि ओम। कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिम्न गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: They go back out. Thank you.

0: Greenwich.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए. ओम पश्चिमाय नमः. ओम उत्तराय नमः. उत्तर दिशाय नमः. ओम दक्षिणाय नमः. ओम ईशानाय नमः. ओम आग्नेय नमः. ओम वायव्ये नमः. ओम नैऋत्ये नमः. शानाय नमः. ओम भूतलाय नमः. नीचे. ओम आकाशाय नमः. आकाश में बस अब फूल रख देंगे सारे दिशा में. नाउ फ्लावर. We need to have flower.
0: Bring me 9 colors flowers from our garden.
1: Yeah, that is already. Hari Om, Om Suryaya Namaha, Om Seta, white. Om Chandraya Namaha, Om Bhaumaya, lal, red. Om Bhaumaya Namaha. भौमाय नमः. नाउ ग्रीन. बुम बुदाय नमः. ओम बुम बुदाय नमः. येलो. ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः. नाउ व्हाइट डायमंड कलर. ओम राम रीम रौ शुक्राय नमः. नाउ ब्लैक सनी कलर.
0: देयर वाज अ डार्क अ डार्क फ्लावर देयर. या दिस वन. या
1: हां
0: थैंक यू.
1: ओम सम शनिश्चराय नमः. सम शनिश्चराय नमः. नाउ ब्लू. ओ ये या या. ओम राम राहवे नमः. ब्राउन. ओम मेबी द वन लाइक पिंक स्टाइल. या यू गॉट इट. ओके. या
0: वेयर इज द वोकाय. वेयर इज द
1: भस्मा.
0: भस्मा
1: देयर इज अ स्मॉल कटोरी. वेयर इज दैट भस्मा.
0: ये ले लो बाहर निकाल दो.
1: बस. ओम किम के दबे नमः. बस बस. अब अग्नि को प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें. ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राण समग्नि अजायत. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः. हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राण समग्नि अजायत. बोलिए अग्नि देवता की जय. नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी. थ्री स्टिक्स. थ्री ओनली फर्स्ट थ्री.
0: ऑल दिस थ्री वंस.
1: नो नो डिफरेंट सेपरेट. या ओके.

ओम धनंतरवे स्वाहा। बस ओह नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी? हाँ ये घी के लिए। ओम प्रजापते स्वाहा। पुट इन योर चेस्ट एंड व्हेन ही सेज स्वाहा, ओके, जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे

0: आप कहा?
1: ये
0: मेरा है।
1: यू कैन से विद स्वाहा, ओके,
0: टुगेदर वी विल चैंट स्वाहा एंड एज विश्व गुरु जी सेज दैट शो मीन्स दैट द परमात्मा हा मीन्स मी एंड द सोल कॉन्शियसनेस टू बॉडी कॉन्शियसनेस connecting each other and whatever negativity, ego, jealousy, hatred with us, we sacrificing because the fire can burn everything.
1: That's not possible, they will not do.
0: And also that we wish that the fire can burn our bad karma as it is burning the firewood. Okay, let's start. ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा नमः स्वाहा, धरो दत्ताय नमः स्वाहा, लोहिताक्षाय नमः स्वाहा, उमाक्षाय नमः स्वाहा, विजयाक्षाय नमः स्वाहा, विशारदाय नमः स्वाहा, सहस्राय नमः स्वाहा, उनिग्राय नमः स्वाहा, उकर्त्रे नमः, ओम सर्वपरिचर निसाय नमः स्वाहा, सर्परिचिर निवासानाय नमः स्वाहा, मुख्याय नमः स्वाहा, अमुख्याय नमः स्वाहा, ओम देहाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, सर्वकामदाय नमः स्वाहा, सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा, ओम सुबलाशाय नमः स्वाहा, ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा, सर्वकामवराय नमः स्वाहा, ओम सर्वकाय नमः स्वाहा, सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा, आकाशनिवेशाय नमः स्वाहा, निपातिने नमः स्वाहा, अवसाय नमः स्वाहा, ओम खगाय नमः स्वाहा, ओम रौद्ररूपाय नमः स्वाहा, अंशवे नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा, बहुरश्मे नमः स्वाहा, ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा, ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा, महावेगाय नमः स्वाहा, मनोवेगाय नमः स्वाहा, निशाचराय नमः स्वाहा, सर्ववासिने नमः स्वाहा, श्रेयवासिने नमः स्वाहा, उपदेशकराय नमः स्वाहा, ओम अकराय नमः स्वाहा, ओम मुनये नमः स्वाहा, आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा, ओम संभवाय नमः स्वाहा, संमग्नाय नमः स्वाहा, सहस्रदाय नमः स्वाहा, ओम पक्षिणे नमः स्वाहा, ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा।

स्वाहा अधिशिवताय नमः, स्वाहा विषमतवे नमः, स्वाहा ओम उन्मादाय नमः, स्वाहा ओम मदनाय नमः, स्वाहा ओम कामाय नमः, स्वाहा ओम अस्वस्थाय नमः, स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः, स्वाहा ओम असये नमः, ओम वामदेवाय नमः,

0: शिवागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन 360
1: ओनली
0: ये
1: 360 हो गए
0: जस्ट वी फिनिश ये
1: 700
0: ये 700 सो दिस इज गुड मेडिटेशन कीप कंटिन्यूइंग मेडिटेशन कलि युग ओम विस्कम्बिने नमः स्वाहा चमुस्तमनाय नमः स्वाहा वृत्तवितकराय नमः स्वाहा तालाय नमः स्वाहा मदवे नमः स्वाहा मधुकुलोचनाय नमः स्वाहा वाचस्पताय नमः स्वाहा वाजस्यनाय नमः स्वाहा नित्यमाश्रित पूजिताय नमः स्वाहा ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा लोकचारिणे नमः स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदिकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा नंदीगवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रे नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्यै नमः ओम अनित्यै नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदिविदुम्नाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिणे सो नमः ओ धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः ये तो है नमः ओम स्वति भावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सनाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवर्चाय नमः स्वाहा सुमणाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमे नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्पवे नमः स्वाहा महागविषाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजिह्वाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा ओम प्रपत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम अहस्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः

0: स्वाहा वृषकराय नमः, स्वाहा वृषकितवे नमः, स्वाहा अनलाय नमः, स्वाहा बाहुबायनाय नमः, स्वाहा गंडलिने नमः, स्वाहा मेरुदाग्ने नमः, स्वाहा मेरुधाम्ने नमः, स्वाहा देवादी नमः, स्वाहा देवाधिपतये नमः, स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः, स्वाहा सामवैशीयाय नमः, स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः, स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः, स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः, स्वाहा अवगुह्याय नमः, स्वाहा प्रकाशाय नमः, स्वाहा जंगमाय नमः, स्वाहा अमोघराय नमः, स्वाहा प्रसादाय नमः, स्वाहा अभिज्ञाय नमः, स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः, स्वाहा ओमकराय नमः, स्वाहा ओम प्रियाय नमः, स्वाहा सर्वाय नमः, स्वाहा कनकाय नमः, स्वाहा कंचन छवये नमः, स्वाहा ओम नाभये नमः, स्वाहा नंदीकाराय नमः, स्वाहा ओम भावाय नमः, स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः, स्वाहा ओम स्थिराय नमः, स्वाहा द्वादशाय नमः, स्वाहा ओम त्रासनाय नमः, स्वाहा ओम आद्याय नमः, स्वाहा ओम यज्ञाय नमः, स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः, स्वाहा नक्तम नमः, ओम कलये नमः, स्वाहा ओम कालाय नमः, स्वाहा ओम मकराय नमः, स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः, स्वाहा ओम सगणाय नमः, स्वाहा ओम गुणकराय नमः, स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः, स्वाहा ओम भस्माय नमः, स्वाहा भस्मधाराय नमः, स्वाहा भस्मगोतने नमः, स्वाहा भस्मशयाय नमः, स्वाहा भस्मगोतने नमः, स्वाहा भस्मभूताय नमः, स्वाहा ओम तरवे नमः, स्वाहा ओम गणाय नमः, स्वाहा लोकपालाय नमः, स्वाहा अलोकाय नमः, स्वाहा अमात्मने नमः, स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः, स्वाहा ओम शुक्लाय नमः, स्वाहा त्रिशुकाय नमः, स्वाहा संपन्नाय नमः, स्वाहा अशुचाय नमः, स्वाहा भूत निविशिताय नमः, स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः, स्वाहा क्रियावस्थाय नमः, स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः, ओम ओम बराय नमः, स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः, स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः, स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके need rice more
0: hari om om ambu jalaaya namaha swaha sunishchalaaya namaha swaha kapilaaya namaha swaha kapisaaya namaha swaha shuklaaya namaha swaha ayushe namaha swaha om aparaaya namaha swaha om paraaya namaha स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः, स्वाहा ओम आदित्ये नमः, स्वाहा तक्षरताय नमः, स्वाहा सुविज्ञेयाय नमः, स्वाहा सुशारदाय नमः, स्वाहा परशुधायुधाय नमः, स्वाहा ओम देवाय नमः, स्वाहा ओम सुशारदाय नमः, स्वाहा परशुधायुधाय नमः, स्वाहा ओम देवाय नमः, स्वाहा ओम अनुकारणे नमः, स्वाहा सुबान्धवाय नमः, स्वाहा तुम्बणिदाय नमः, स्वाहा महाक्रोधाय नमः, स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः, स्वाहा जलेशयाय नमः, स्वाहा उग्नाय नमः, वसंकराय नमः, स्वाहा ओम वंशाय नमः, स्वाहा वंशनादानाय नमः, स्वाहा अविन्दाय नमः, स्वाहा अनिन्दिताय नमः, स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः, स्वाहा मायाविने नमः, स्वाहा ओम सुहृदाय नमः, स्वाहा अनिलाय नमः, स्वाहा अनल्लघाय नमः, स्वाहा बंदनाय नमः, स्वाहा बंदकर्ते नमः, स्वाहा सुबंधबीजाय नमः, स्वाहा सहसारगे नमः, स्वाहा सहज्ञानरथे नमः, स्वाहा सकारमानाय नमः, स्वाहा महाद्रश्याय नमः, स्वाहा मायायुधाय नमः, स्वाहा बहुधानिन्थ्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा ओम शंकराय नमः, स्वाहा ओम अगनाय नमः, स्वाहा ओम अमरेशाय नमः, स्वाहा ओम महादेवाय नमः, स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः, स्वाहा ओ सुराग्रिणे नमः, स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः, स्वाहा अनिलाभाय नमः, स्वाहा शेखितानाय नमः, स्वाहा हविषे नमः, ओम अजय पातके नमः, स्वाहा अजय कपाते नमः, स्वाहा ओम कापिले नमः, स्वाहा त्रिशंके नमः, स्वाहा अजिताय नमः, स्वाहा ओम शिवाय नमः, स्वाहा ओम धनंतरे नमः, स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः, स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः, स्वाहा वैष्णवाय नमः, स्वाहा ओम धात्रे नमः, स्वाहा ओम शुक्राय नमः, स्वाहा ओम विष्णवे नमः, स्वाहा ओम मित्राय नमः, स्वाहा ओ तोष्ट्रे नमः, स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः, स्वाहा ओम धराय नमः, स्वाहा ओम प्रभवाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः, स्वाहा

0: सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा, अर्थमे नमः स्वाहा, सवित्रे नमः स्वाहा, उम्रवे नमः स्वाहा, ओषंगे नमः स्वाहा, विधात्रे नमः स्वाहा, ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, ओम विभवे नमः स्वाहा, ओम वणविवाहिने नमः स्वाहा, ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा, सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा, पद्मनाभाय नमः स्वाहा, महागर्भाय नमः स्वाहा, चंद्रवस्त्राय नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, अनलाय नमः स्वाहा, बलवते नमः स्वाहा, उपशांताय नमः स्वाहा, पुराणाय नमः स्वाहा, पुण्यसंजने नमः स्वाहा, ओम ए नाम स्वाहा, कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा, ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा, कुरुभूताय नमः स्वाहा, ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा, ओम सर्वासाय नमः स्वाहा, दर्वचारिणी नमः स्वाहा, सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा, ओम देवादेवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा, ओम सते नमः स्वाहा, ओम असते नमः स्वाहा, ओम सर्वरत्नवेद नमः स्वाहा, ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा, हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा, हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा, ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा, ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा, ओम बहुविद्याय नमः स्वाहा, ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा, ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा, ओम वरदकिने नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, ओम वकिलाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम अलोलाय नमः स्वाहा, ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम महाजत्रे नमः स्वाहा, ओम अलोचाय नमः स्वाहा, महासौदाय नमः स्वाहा, सिद्धकारिणी नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, वरदकिने नमः स्वाहा, वाणिज्याय नमः स्वाहा, वकिलाय नमः स्वाहा, बहुप्रदाय नमः स्वाहा, बहुविद्याय नमः स्वाहा, सिद्धार्थकारिणी नमः स्वाहा, सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा, सिंहनादनाय नमः स्वाहा, सिंहधर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा, सिंहगाय नमः स्वाहा, सिंहवाहनाय नमः स्वाहा, प्रभात्मने नमः स्वाहा, जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा, लोकहिताय नमः स्वाहा, अमतरवे नमः स्वाहा, सारंजाय नमः स्वाहा, नवचक्रांगाय नमः स्वाहा, केतुमालिने नमः स्वाहा, सवानाय नमः स्वाहा, भूतालयाय नमः स्वाहा, भूतपतये नमः स्वाहा, अहोरात्राय नमः स्वाहा, अग्निदिताय नमः स्वाहा, सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, विभवे नमः स्वाहा, भवनाय नमः स्वाहा, अमुगाय नमः स्वाहा, संगताय नमः स्वाहा, अश्वाय नमः स्वाहा, भोजनाय नमः स्वाहा, प्राणधाराय नमः स्वाहा, घृतमिदे नमः स्वाहा, अमिताय नमः स्वाहा, दक्षाय नमः स्वाहा, सत्कृताय नमः स्वाहा, युगधापिताय नमः स्वाहा, गोपालाय नमः स्वाहा, गोपतये नमः, ओम गामाय नमः स्वाहा, गोमवर्चनाय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा, प्रवेशिनाय नमः स्वाहा, गुहालपालाय नमः स्वाहा, प्रकिष्टारे नमः स्वाहा, महर्षाय नमः स्वाहा, जितकामाय नमः स्वाहा, जितेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम गंधधराय नमः स्वाहा, उषताय नमः स्वाहा, 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्सक्ताय नमः स्वाहा, ओम रतये नमः स्वाहा, ओम नराय नमः स्वाहा, महागीताय नमः स्वाहा, मायानित्याय नमः स्वाहा, अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा, महाकेतवे नमः स्वाहा, महाधातवे नमः स्वाहा, नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा, नेकसानुचराय नमः स्वाहा, ओम चलाय नमः स्वाहा, ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा, आदेशयाय नमः स्वाहा, सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा, ओम तोरणाय नमः स्वाहा, ओम तारणाय नमः स्वाहा, ओम बाताय नमः स्वाहा, परिधने नमः स्वाहा, परिखेचराय नमः स्वाहा, संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा, संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा, ओम वृद्धाय नमः स्वाहा, अतिवृद्धाय नमः स्वाहा, ओम अतिवृद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा, ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा, देवासुरपतये नमः स्वाहा, ओम पतये नमः स्वाहा, ओम युक्ताय नमः स्वाहा, ओम युक्तभावे नमः स्वाहा, दिवि सुपर्णे नमः स्वाहा, अषडाय नमः स्वाहा, ओम सुपर्षाय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम हरिणाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भी वसे नमः स्वाहा ओम वसु श्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणिये नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनीपाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणिपानविदे नमः स्वाहा उमूलाय नमः स्वाहा विशलाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम योगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगनाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हर सुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अवृतलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओम शंकाय नमः स्वाहा उत्थनाय नमः स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमनाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकृणवणाय नमः स्वाहा अरिहच्छाय नमः ओम कुम्भाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रदाय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधान धृते नमः स्वाहा सर्व पार्श्व मुखाय नमः स्वाहा।

ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्म साधारणे नमः ओम धर्म साधारणो बराय जन्नमः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा सारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्य नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शुंगुपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षपाश्यो नमः स्वाहा ओम वर्णशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा ओम आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्ग द्वाराय नमः स्वाहा प्रजा द्वाराय नमः स्वाहा मोक्ष द्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणकृत्यै नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्त्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राज राजाय नमः स्वाहा निराजाय नमः स्वाहा अविराय नमः स्वाहा अविरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा विरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पर्याये गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः
स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्री वर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावले शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव। शिव जी के 11 1008 तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं बचा है वेट वेट है तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर ओके ओम नमः

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे तुम बचा हुआ गिरा दीजिए। वॉट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देई मन्युमसि मन्युमहि।

ओजमहीदेहि मन्युमसि मन्युमहीदेहि ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति शांति रापा शांति रो सधाया

0: शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरिओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरिओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक ओके।
0: वी पुट लिटिल घी।

परम सुखदम केवलम ज्ञानमोर द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, होली लैंड भारत। वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड दोज हु आर इन अदर कंट्रीज। द गुरु पूर्णिमा हैज मैनी मीनिंग्स। फर्स्ट व्हाट उपनिषद एंड वेद सेज, तमसो मा ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे, ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल, नॉलेज इज द लाइट एंड इग्नोरेंस इज द डार्कनेस। द लाइट ऑफ द नॉलेज इज नॉट दिस फिजिकल लाइट विच वी सी विद अवर फिजिकल आईज, बट इट इज द लाइट विच इज विद इन अवर सेल्फ इन ईच एंड एवरी एंटिटी। But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan विद्या चाहिए। बुद्धि
को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get, like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है, अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज, इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा रिबू है, कोई मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है कि हमारी बेटी है, तीसरे कहता हमारी बहन है, और दूसरा कहता हमारी बुआ है, दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है, काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं, एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, विच गॉड हैज नो नेम. All are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school.
अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ा हो तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे। नौकरी पड़ी खा डरे माए, मनुष्य बनाओ बच्चे को। आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी

is a living dharma. What does it mean? What means the living dharma? One mother gives a birth to a child. It is the dharma of the mother to give a birth to the child. It's her dharma, wo sanatan dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु है. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर, चाइल्ड, हस्बैंड, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meaning than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक की ही जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी. वही इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल. दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल. जिंदा और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यहीं पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा. कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. पर माँ कोई नाग देवता बैठा हुआ तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है. जो ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर. ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं. पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे, दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा. अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर 1 आवर

0: The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो गौ सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatana Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.